0: आता छावा सांप कुछ नहीं कराए सम सांप कुछ नहीं करता लिया वो अपने चल गए कुछ कराए वो सब कुछ सांप बिखा थे नहीं रहता
1: बिखा हो कि नहीं हो कसी कसी हिना दाई
2: लिया नेपाल में पा जिना बिखा सांपन का विषय में सुन एक थोड़ा गरेता जो खास कह खा, रातिक समय में घर भीतर बैठ सक ई कटला से निबाई फे सकत तर कटलक पास देह भाग जो निचलना कह सास फैर जो निसेकना में से लक् हो सकता और रठ डोम जो बड़ा रिसाहा में रिक रठ निकरा फाट फूले डोम सांप दिन व रात दोनों में देख पड़ना वो खास कह संजय बिहान देख पड़ निकर कटल से फिर लक्वा हुई सकता वो और रठ कैरी जाटक सांप निकर कटल कल से कटलक भाग सुई था वो बड़ा कर्र से बैठे था रकत थे पाती होकर रकत बहना हुई सकता उसने कहा हमारे देशक तरह एक सक्कू भूभाग में पा देना बगोपने न फुनका रहना बाधे सांप ई सांप दस लाख बेरहमेन कम खेल पा दे था तर हिकन कटाई एकदम खतरनाक था
3: बर्खा छा को अनाज बिपिना समय में सापन का कटाई अथवा दसाई का घटना ध्यूर बिना कथा बहिया वो और प्राकृतिक प्रकोप का कारण सापन का बचारा नाशिवे सापन का दसाई का घटना ध्यूर बिना कर लग पा जाए
4: ध्यूर जसिन सापन का दसाई हानिकारक नहीं रहा वह फिर यदि सपा दस डाल कल से तुरंत लगभग उपचार केंद्र में जा जाए पर
0: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाख और लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई पट्टा लगाए लाख आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाकर आवश्यक जानकारी लिए सकते था
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथ ही बीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसंधान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाण्डौ मिटटाउन का साथ साथै विश्वभरका रोटरी फ्रेण्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: कंसल्टेंट इंडोक्राइनोलॉजिस्ट MBBS MD इंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबोलिज्म डाक्टर कृष्ण ऐरी ईशान मेडिकल हल टीकापुर में यही साउन 23 गते चौथो शनिवार का दिन बिरामी चेकजाक गर्न आउँदै हुनुहुन्छ
7: निम्न समस्याहरू
6: सुगर रोग
7: गर्भकालीन मधुमेह
6: महिला को शरीर में अनावश्यक रौं बढ़ने
7: सुगर रोग का कारण हुने समस्या जस्तै खुट्टा झमझमाउने पोल्ने दिन तथा रात में पटक पटक पिसाब लाग्ने मुख सुक्ने तिर्खा लाग्ने
6: थायराइड कम जस्तै थकान लाग्ने तौल बढ़ने छाला सुक्खा हुने कपाल झर्ने अनुहार फुल्ने चिसो बढी लाग्ने
7: थायराइड बढी जस्तै तौल घट्ने धड्कन बढ्ने पसिना धेरै आउने निन्द्रा नलाग्ने हात कामने चिचिडापन आँखा फुलेर बाहिर आउने
6: कम उमेरमा पनि प्रेसर मोटोपन कोलेस्ट्रोल बढ्ने
7: उमेर अनुसार शरीरको उचाइ नबढ्ने वा धेरै अग्लो हुने महिनावारीमा गडबडी र यौन इच्छामा कमी हुने के तपाईँलाई निम्न मध्येका कुनै समस्या त छैन छ भने ईशान मेडिकल हलमा सम्पर्क गर्नुहोला सम्पर्क नम्बर 9852311 र 9860114000 डाक्टर आउने समय प्रत्येक महिनाको चौथो शनिवार बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म सम्पर्क स्थान ईशान मेडिकल हल टिकापुर 1 कैलाली
8: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैबो पाछसे सुरु करल मने घर सिजार सेक्ल
9: अरे का करुरी बुढिया कठुआ खोजत खोजत परे सान हो दिल बाटू मिलबो मिलबो नि करत का कैना हो का
8: मिस्तरान बर्जनाऊ का न घर हेरो ना अट्टा सुगुर बनैला बाट आल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना वट्र फे पटानी हुई कि गुंगवा बुरो हो ना कबू कहूँ र घूम जाए ता था पाए
10: UPVC ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
11: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426

0: जिजापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार र बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली।
1: के तपाईलाई थाहा छ,
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
1: हो र?
2: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
1: के छ त विकल्प?
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं।
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
2: अहँ, हुँदैन। टीकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
1: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
2: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टीकापुर कैलाली।
3: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
4: मै नै जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगर के घर से बाहर नहीं निकरछु।
3: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
4: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर के परेशान रहू, तब तो मैं अब भी जाए।
5: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रप, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल, घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।

0: बुका पिए रहता कभी पेंसिल रहता कभी झोले फटाका आज काकना हो काकना हो बाबा के ओस्ट बाटिन गटिलो ठाउ से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरत।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउ से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से नाम था
0: कहाँ से लन बहु तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस का टस बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में रट गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिकल झोला है मरम फेकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: 11 प्रकार का विशेषज्ञ सेवाहरू अब टीकापुर अस्पताल में उपचार का लागि विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाहरू
1: हाड़ जोड़ने विशेषज्ञ सेवा र विशेषकृत आर्थ्रोस्कोपी सेवा जोड़नी को दूरबीन बाट शल्यक्रिया
0: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा लैप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पाठीघर को शल्यक्रिया सेवा
1: बाल रोग विशेषज्ञ सेवा जनरल सर्जन द्वारा विभिन्न किसिम का शल्यक्रिया सेवा लैप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पेट को शल्यक्रिया सेवा
0: जनरल फिजिशियन विशेषज्ञ सेवा
1: रेडियोलॉजिस्ट विशेषज्ञ सेवा
0: रोग सेवा
1: मृगौला का बिरामी का लागि डायलिसिस सेवा
0: मनोचिकित्सक विशेषज्ञ सेवा
2: हरेक महीना को प्रत्येक शनिवार
0: र सिटी स्कैन सेवा
1: गंभीर बिरामी का लागि भेन्टिलेटर सहित को आईसीयू एसडीयू सीईओएनसी र बाल बालिका का लागि एसएनसीयू सेवा
0: रोग पहचान का लागि प्रयोगशाला सेवा बायोकेमिस्ट्री इम्युनोलॉजी हिस्टोपैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी पारासिटोलॉजी सेरोलॉजी इंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी डिजिटल वीडियो एक्सरे अल्ट्रासाउंड डिजिटल एक्सरे सेवा ईसीजी फिजियोथेरापी सेवा अस्पताल का अन्य सेवाहरू स्वास्थ्य बीमा सेवा सुरक्षित गर्भपतन सीएसी सेवा
1: फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा 24 घंटा
0: इमर्जेन्सी सेवा एम्बुलेन्स सेवा सब वाहन सेवा
1: हिंसा पीड़ितहरूका लागि ओसीएमसी सेवा मेडिको लिगल सेवा
0: सब परीक्षण सेवा सर्पदंशको उपचार
1: 12 लक्षित समूहलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सामाजिक सेवा इकाई
0: जनस्वास्थ्य तर्फ खोप सेवा एआरटी सेवा टीबी लेप्रोसिजिन एक्सपोर्ट सेवा
1: सेवा पाउन कठिनाई भएमा अस्पताल प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-488 सूचना अधिकारी पदमराज भट्ट फोन नम्बर 97-62-48-35-8 उपेन्द्र शाह 98-21-60-24-57 र अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत सरोज चौधरी को फोन नम्बर 98-57-85-63-22 मा खबर गर्नुहोला वा टीकापुर अस्पताल को क्यूआर कोड मार्फत अनलाइन सुझाव गुनासा रेकर्ड गराउनुहोला।
3: चर्पी भर्न से फिर का चिन्ता आदित्य सेफ्टी टेंकी सर

सरसफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसफाई सेवाहना सम्झवे। संचालक शेरबहादुर थारू, सम्पर्क नम्बर 97620300 98656 92026।

0: सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थार भाषक खोज खबर में यहां स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अभ्यत्नी खुकरे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रोमा फेरि सुन्ति रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। देशभर मनसून के प्रभाव कायम, आज पश्चिम लुम्बिनी और कर्णाली में भारी वर्षा के संभावना। रासायनिक मल अभाव सहकारी में बदमाशी, दर में समेत मल वितरण हुई थी, किसान कसै कबू समस्या में समेत समय में मल नहीं पागे। टीकापुर के रानी कर्णाली सामुदायिक बनवा के काठ बाहेक के वन पैदावार से आमदानी करना योजना बनाई थी। वड़ा स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति के विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु परिवर्तन संबंधी अभिमुखीकरण। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार हाल देशभर मानसूनी वायु के प्रभाव रहल बा। मानसून की न्यूनचापीय रेखा सरदर स्थान के आसपास में अवस्थित रलक ओर से ई बेला देशभर समेत हिमाली तथा पहाड़ी भूभाग में साधारणतया मौसम बदलती वाकल से तराई भूभाग में आंशिक मौसम बदलता। कोसी और बागमती प्रदेश के कुछ स्थान के साथ ही गंडकी प्रदेश और एक दो स्थान में मेघ गर्जन और चट्टांग सहित मध्यम से लेके भारी वर्षा समेत हुई रहल बा। आज देश के हिमाली भूभाग में समेत कुछ स्थान और पहाड़ी भूभाग में ढेर स्थान में मेघ गर्जन और चट्टांग सहित मध्यम वर्षा तथा हिमपात के संभावना रहल बा। लुम्बिनी और सुदूरपश्चिम प्रदेश के तराई भूभाग में ढेर स्थान में मध्यम वर्षा हुई बा। कोसी मधेश बागमती और गंडकी प्रदेश के तराई भूभाग में कम स्थान में फिर चट्टांग सहित वर्षा के संभावना देखा गिल बा। महाशाखा के अनुसार कर्णाली प्रदेश के पहाड़ी भूभाग तथा लुम्बिनी और सुदूरपश्चिम प्रदेश के पहाड़ एवं तराई में एक दो स्थान में भारी वर्षा की संभावना बा। वर्षा और चट्टांग के समेत जोखिम रहने को से आवश्यक सतर्कता अपनाना महाशाखा से अनुरोध करल बा। वड़ा स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति के से समेत विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु परिवर्तन संबंधी अभिमुखीकरण कार्यक्रम करल बा। कार्यक्रममा टीकापुर नगरपालिका के समेत सहकार्य तथा प्रैक्टिकल एक्शन ओ बी ग्रुप के समुदाय के लाख जलवायु उत्थानशील कार्यक्रम के आयोजन कर गिलेखो। प्रैक्टिकल एक्शन ओ बी ग्रुप के समुदाय के लाख जलवायु उत्थानशील कार्यक्रम संयोजक हेमंत राज जोशी से विपद जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन संबंधी नीतिगत अवस्था के बारे में जानकारी देना खोजल तथा खोज तथा उद्धार के सामग्री में प्रयोग को व्यवस्थापन के बारे में सीखना, स्थानीय स्तर में पूर्व सूचना प्रणाली और बाढ़ी बीमा संबंधी जानकारी देना कार्यक्रम करल जानकारी दे बाटे। समुदाय के लग जलवायु उत्थानशील कार्यक्रम टीकापुर सहित कैलाली के 3 उबरदिया के समेत 5 पालिकामा 40 थो समुदायमा सञ्चालनमा रहलबा। कार्यक्रमके पूर्व तयारी प्राथमिकता दैके काम गर्दै रहलबा। पूर्व सूचना अस्तक प्रणाली सक्रिय बनाइना सहयोग करल समेत बटागिलबा। कार्यक्रममा टीकापुरके 9 थो समेत वडा स्तरीय विपद व्यवस्थापन समितिके पदाधिकारी सहभागिता जनाइल बाटे। टीकापुर नगरपालिकाके वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखा निर्मला चौधरी बी ग्रुप के समुदाय में समेत सामग्री उपलब्ध कराएल सामग्री प्रयोग बारे क्षमता अभिवृद्धि के लाग कार्यक्रम करती रलक ओ सहज हुईल बटोले बाटे। समुदाय में समेत विपद व्यवस्थापन समिति वैदिक के भोजराज ढुंगाना बाढ़ी प्रभावित क्षेत्र के बासिंदा डॉक्टर नैसिंह खाल के अभिमुखीकरण से विपद व्यवस्थापन में सहज होना बटोले बाटे। खोज खबर में एक घड़ी विश्राम, विश्राम पास फिर से भी सुनते रहे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में नया विद्यार्थी भर्ना खुल्यो। टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तहका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा शैक्षिक सत्र 2083-84 नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश आवेदन फारम वितरण भइरहेको ब्यौरा सम्बन्धित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ।
2: संकायहरू व्यवस्थापन संकाय तर्फका शैक्षिक कार्यक्रमहरू
1: बीबीए र बीबीएस ऐच्छिक विषयहरू एकाउन्टेन्सी फाइनान्स र मार्केटिङ
2: प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र समय बीबीए का लागि साउन 17 गते बिहान 8 बजे बीबीएस का लागि साउन 17 गते बिहान 10 बजे
1: शिक्षा शास्त्र संकाय बीएड ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश नेपाली हेल्थ एन्ड म्याथमेटिक्स
2: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे
1: मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय बीए ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश डेभलपमेन्ट स्टडीज सोसियोलोजी एन्ड इकोनोमिक्स
2: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते बिहान 8 बजे कक्षा सञ्चालन भदौ 1 गते देखि
1: क्याम्पसका विशेषताहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट 1 वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन क्यूए प्राप्त सरकारी क्याम्पस
2: कुल विद्यार्थी भर्नाको 25% विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको
1: न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनमा जोड़ दिइने
2: पीएचडी तथा एमफिल गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट प्राध्यापन गराइने
1: आईसीटी इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न नन क्रेडिट कोर्सहरूका कक्षाहरू तथा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने
2: उपचार कक्ष ई लाइब्रेरी फ्री वाईफाई प्रोजेक्टर डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सहितका कक्षा कोठा शुद्ध खाने पानी प्राथमिक उपचार कक्ष व्यवस्थित क्यान्टिन खेल मैदान लगायत सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको
1: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त देशभरिका अन्य क्याम्पसहरूमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिने
2: कक्षा 12 पूरक परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले समेत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्
1: थप जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-088 र 561-088
2: टिकापुर बहुमुखी क्याम्पस टिकापुर कैलाली
3: ल यति छिटो आमा बन्न लागेको त
4: पाउँदैछु यस्तो अवस्थामा पनि घरमा सकि नसकि सबै काम गर्नुपर्छ कस्तो गाह्रो हुन्छ पनि काम गर्न विदेश जानु भएको छ के गर्ने के नगर्ने केही थाहा छैन म त जानु परे जस्तै लाग्छ
3: यस्तो राम्रो पढ्ने मेरो साथी बाल विवाह गरेर आफ्नो वर्तमान र भविष्य दुवै अन्यलमा पारी 20 मुनि हामी कसैले पनि विवाह वा भागी विवाह नगरौ
5: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
6: टिकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
7: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम यही साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको ब्यौरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ
6: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर
0: पाछ फेर से स्वागत बा टीकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 स्थित रानी कर्णाली सामुदायिक वनमा 2066 सालमा स्थापना हुएको हो 192.29 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलल सामुदायिक वनमा खैर सिसम उस्तका सिरिज जामुन उस्तका साल सिमाल बेदबास लगायतकी वन पैदावार समेत रहलबा सामुदायिक वनमा रहल समेत खैर वनवाके मुख्य आयस्रोत के रूपमा रहलबा टीकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 स्थित रानी कर्णाली सामुदायिक वनवामा 2066 सालमा स्थापना हुलक सामुदायिक वनवा हो पहिल खोटेना भुराखानी सामुदायिक वनवा अकेथो रहल पाछे 2066 सालमा उ वनवा 4 भागमा विभाजन करल पाछे 4 थो वनवा के नाउ अलग अलग धारगिलबा उमध्ये एक थो नाउ हो समेत रानी कर्णाली सामुदायिक वनवा रानी कर्णाली सामुदायिक वनवा पूर्व शीतल सामुदायिक वनवा बा कलश उस्तक पश्चिम लंग खोटेना भुराखानी सामुदायिक वनवा रहलबा उत्तर लंग रानी पुलवा दक्षिण लंग कर्णाली लद्याक यी 4 किल्ला भित्र रहलबा 192.29 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलल सामुदायिक वनवामा खैर सिसम सिरिस लगायतके बेदबास वन पैदावार रहलबा सामुदायिक वनवामा रहल खैर मुख्य आय स्रोत के रूप में काम होते बतवागिल बा ये अलावा औरा समेत वन पैदावार में फे आय स्रोत के माध्यम बनती रह बा एक साथ सामुदायिक बनवा भीतर जड़ी बुटी ओ बेद बास फे बा सामुदायिक बफर नेपाल के सहयोग में समेत कुछ उपभोक्ता होकरण तालीम समेत प्रदान करते रह बा ई तालीम मन से सीखल सिर्फ सदुपयोग करल पा से कुछ आमदानी होना अपेक्षा करगिल बा सामुदायिक बनवा बनवा से अब आय स्रोत बदना नहीं सकल हो इे फे आय स्रोत में बन सकले से सामुदायिक बनवा अभिन्न आमदानी के स्रोत बढ़ाई सकी 1749 घरदूरी रहलक सामुदायिक बनवा में 7,479 जाने उपभोक्ता रहल बाटे पाछक समय में सहकारी में रासायनिक मल अभाव हुई रहल बा मल के अभाव के कारण सहकारी हुकरा किसान हुकरन दामाशाही आधार में मल वितरण करती रहल बाटे किसान हुकरन के गुनासो फे ऐति रहल बा न्यू जनसेवा ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्था के व्यवस्थापक किरण थापा सहकारी में मल अभाव के बारे में किसान हुकरन जानकारी कराल बाटे बेला किसान हुकरन के खेतवा में झार मल औषधि दर्ती रलक हो मल छिटना बेला रलक ओर से सहकारी में मल अभाव हुईल सफे मल पाई निसेकल हुई पाछक समय में सहकारी में किसान हुकरन के माग बमोजिम मल आपूर्ति नहीं हुईल ओर से सहकारी दामाशाही के आधार में रासायनिक मल यूरिया वितरण करती रहल बा सहकारी में मल आयल सुन के समेत मल लेना गैल मनो जम्मा 5 किलोकेल मल पायल समेत तारा विकास से गुनासो करल बाटे पाछक समय में कोटा सिस्टम में समेत एक पटक में जम्मा समेत मल एकदम कम ऐना रलक ओर से किसान हुकरन वितरण करना नहीं धौधौ हुई रहल न्यू जनसेवा ग्रामीण विद्युत सहकारी के व्यवस्थापक किरण थापा के कहवा किसान हुकरन चाहल जत्रा मल उपलब्ध कराइन नहीं सकलक ओर से समस्या होना करल वहां बटैले बाटे उसका देवराली भंज्या सहकारी संस्था माफे समेत अवस्था वस्तवा किसान हुकरा के माग ढेर रल से फेन आपूर्ति कम होती रहल बा वितरण में समस्या होती रहलको हाल किसान हुकरन के चिंता समेत रहल बा चित्त बुझेना दामाशाही तरीका में यूरिया मल वितरण करल व्यवस्थापक आशा चौधरी बटोले बाटे उसका कृषि सामग्री कंपनी में नई मल अभाव रलको सहकारी के माग के आधार पर मल आई नहीं सकलको क्षेत्र में सहकारी में ई समस्या आयल टीकापुर नगर पालिका कृषि शाखा के प्रमुख मोती सिंह बिका बटोले बाटे वहां के अनुसार कुछ दिन पाछे सहकारी के माग के आधार में मल ऐन किसान हुकरन के समस्या समाधान होना वहां के कहा बा नागढुंगा सिस्ने खोला सुरुंग मार्ग के आज औपचारिक उद्घाटन हुई बा यह मुलुक के पहल व्यवस्थित यातायात सुरुंग के रूप में लैगिल बा प्रोधार विकास मंत्री सुनील लम्साल वहां समेत स्थित के जापानी राजदूत मायादा तोरू जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में नियोग जायका के समेत अध्यक्षता लगायत के वरिष्ठ समेत अधिकारी हुकरन के उपस्थिति में सुरुंग के उद्घाटन करना कहलबा उद्घाटन में निर्माण पक्ष से सुरुंग मार्ग नेपाल सरकार हे हस्तांतरण करना बताया गया बा पूर्वाधार विकास मंत्री के प्रमुख आतिथ्य में बिहान के 10:10 बजे सुरुंग मार्ग के उद्घाटन करना कार्यक्रम तैयार हुई बा खोज खबर में एक घड़ी विश्राम विश्राम पाक से फिर से भी सुनते रहिए सामुदायिक रेडियो टीका एफएम
8: मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च नवीकरण तथा नयाँ दर्ता बारे अत्यन्त जरुरी सूचना
6: टीकापुर नगरपालिकाको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि 2078 तोके बमोजिम उपचार बापत खर्च प्राप्त गरिरहेका लाभग्राही तथा नयाँ लाभग्राहीहरूले आर्थिक वर्ष 2083-84 उक्त उपचार बापत खर्च प्राप्त गर्नका निम्ति तपसिल बमोजिमका कागजात सहित यही श्रावण 5 गतेदेखि भाद्र 5 गतेसम्म लाभग्राही स्वयं वा निजको निवेदन सहित नजिकका हकदार उपस्थित भई आफ्नो परिचय पत्र नवीकरण तथा नयाँ दर्ता गराउनका लागि टीकापुर नगरपालिकाको जनस्वास्थ्य शाखामा सम्पर्क गर्न यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ।
8: तपसिल
6: सम्पूर्ण लाभग्राहीहरूको सक्कल नेपाली नागरिकता र एक प्रति फोटोकपी,
8: बैंकको सक्कल चेकबुक र एक प्रति फोटोकपी,
6: मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको हकमा नगरपालिकाले जारी गरेको अपाङ्गताको परिचय पत्र,
8: नाबालकको हकमा जन्म दर्ता प्रतिलिपि, हालसालै खिचेको फोटो 2 प्रति,
6: क्यान्सर रोगीहरूको हकमा 3-3 महिनाभित्र निरन्तर निगरानीमा रहेको प्रमाण पत्र खुल्ने कागजात र वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र।
8: थप जानकारीका लागि जनस्वास्थ्य शाखाको फोन नम्बर 091-560-122 सम्पर्क गर्नुहोला।
6: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।
9: के तपाईँलाई किचन वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
10: ग्रीष्मा टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुपथ मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेरस टीकापुर कैलाली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849-85-18-08।
11: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
12: मै नै जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नै निकर छु।
11: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाइबो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होइसे उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
12: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
13: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाग, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
14: संपर्क मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टीकापुर। फोन नंबर 9860071024 ओ 9846-77417।
0: विश्राम पासे फेर से स्वागत बा। धनगढ़ीमा शरीरमा पेट्रोल छिड़क के आत्मदाह के प्रयास करलक युवती के मृत्यु हिलवा। धनगढ़ी उपमहानगरपालिका 7 के 35 वर्ष के ज्योति चौधरी के मृत्यु हिल प्रहरी से जनायल बा। जिला प्रहरी कार्यालय के प्रहरी निरीक्षक कैलाश मिश्र से चौधरी अटवार के सांझ के अपने शरीर में समेत घर भित्रे पेट्रोल छिड़क के आगे लगाए रहे। वह आफंता से तत्काल उद्धार करके सेती प्रादेशिक अस्पताल पुगा गिल रहा। उपचार के क्रम में वहां के शरीर के करीब 60% भाग जरल, चिकित्सक उक्ता बताएल रहे। गंभीर अवस्था के चौधरी उपचार के लग फेरी अस्पताल नेपालगंज में पठाई गई। मनो आफंत से वहां काठमांडू लै गेल रहे। वहां सोमवार बिहान 7 बजे लंग धारिंग पुगे बेर काठमांडू में समेत दग्रह में लै जाए बेर मौत फिलक बिस्तर जनायल बा। वहां के शव कैलाली लन्ना प्रक्रिया आगे बढ़ाएल बता गेल बा। शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर में वर्षायाम के कारण झाड़ी बुट्यानो समेत अनावश्यक वनस्पति अत्याधिक फैलल बा। यही सुरक्षित आवट जावट में समेत समस्या होती रह बा झाड़ी कटान तथा सरसफाई करना विश्वविद्यालय से आंतरिक स्रोत मन से नहीं पुगल हो उह मारे सरसफाई अभियान में सहयोग के लग हार्दिक अनुरोध करल बा साउन चार गते से दोपहर के 3:15 बजे विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर सुनील कुमार जोशी सामाजिक संजाल में लिखल रही ओकर बिहान से सकुलंग समेत झाड़ू बोक के संयोग नागरिक वहां पुगल रहे वहां दैनिक जैसिन संयोग विद्यार्थी शिक्षक व्यावसायिक कर्मचारी युवा कलाप सामाजिक अभियंताओं आम नागरिक से स्वस्फूर्त रूप में विद्यालय परिसर में सरसफाई करल बता गिल बा पदाधिकारी उन के एक आह्वान से नागरिक में देखाये ऊर्जा उत्साह से विश्वविद्यालय प्रति यहां के नागरिक उन के मुहाफे बढ़ल बता गिल बा ये समाचार संगे खोज खबर रॉयल जैना से पहले खबर के मुख्य शीर्षक फिर से देशभर मानसून के प्रभाव कायम आसुर पश्चिम लुम्बिनी कर्णाली में भारी पानी पर्न संभावना रासायनिक मल अभाव सहकारी में दामशाही के दर में मल वितरण हुई थी किसान कबू समय में मल नहीं पाए टीकापुर के रानी कर्णाली सामुदायिक बनुआ में कठुआ बाहेक के वन पैदावार से आमदानी करने योजना बनाई थी वाड़ा स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति से विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु परिवर्तन संबंधी अभिमुखीकरण लिटा बकलक थारू भाषक खोज खबर और समाचार 12 बजे मध्यान्ह खबर सुन सकिया खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई तू सामुदायिक रेडियो टीका प्रयाक्रम सुनते विराम रहा।

0: काहुल बाबू अपने कल का लाइट रही अपने का करे कल का लाइट रही ले भुइया में के हो का करे भुइया में धनवा नाल बाटी
1: दादू हमारा
0: एम्बुलेंस और चार गोरिया मोटर जो खोज के अस्या लाग के बैठनी हुई यह लगे बस्ती में मोर एक जाने मोटरसाइकिल वाला संघरिया बा कौन कही दादू अपने नी आते है ना संघरिया ध्यान दी। हेलो मुकेश तू जबते ही मोटरसाइकिल लेके यहाँ आ जाओ तो यहाँ एक जना बाबू है ना सपवा काट के ना इमरजेंसी पर गिन तुरंत ही उपचार केंद्र में ले जाए पड़ल राजमार्ग 400 मीटर पश्चिम बाव पांचर बाटी ना हमरा मुकेश जबते ही आओ हाँ सबको काम छोड़ खा
2: बेटा संतोष मैं मोटरसाइकिल लेके आएगी ना
0: सुनी बाबू सपो कटलक मने है ना जतरा साइकिल झटते ही एंटी वेनम उपलब्ध हुई उपचार केंद्र में ले जा रहे पड़ता ऐसी ब्याला में सबसे झटते हुई ना यातायात के साधन वाजे पड़ता यदि मोटरसाइकिल के व्यवस्था बाकल से अपने वो सवारी चालक के बीच में सपो कटलक मने है ना सुरक्षित हुई ना मेर से बैठा कर तुरंत उपचार केंद्र पुगाई पड़ता मुकेश मोटरसाइकिल लेके आ गई मोर भर पर ना संघरिया मैं तुरंत बेरे में है ना मुकेश के मोटरसाइकिल में बीच से बैठा कर ना उपचार केंद्र पुगा डालू अपने मोटरसाइकिल लेके ओरी आए
1: हुई था और ट्रैगन लगा दे दादू दही सब सुने जाए
3: काट कही सांप दस्त से मोटरसाइकिल स्वयं से डी बलाई सर्पदंश उपचार केंद्र जाकर जान बचाई
4: यदि समय में जो उपचार कर सकल से सांप डसलक मनिन बचाए सक दी था वो यही मसे हुई ना मृत्यु दर फिर कम कर सक दी था सांप डसलक मने है ना छट्ट से छट्ट उपचार केंद्र में ले जा डारी यही ले ऊ मने एक जीवन बचाए भारी मदद कर था विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कैख पट्टा लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाख आवश्यक जानकारी लिए सकती था
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिटटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

0: कब्बू का पी रही था, कब्बू पेंसिल ले रही था, कब्बू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा के ओस्ट पाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनले से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जलम भर भर भर थी रहा
0: का हुई, कब्बू लड़का कॉपी हेरा कई था, कब्बू पेंसिल हेरा कई था, कब्बू झोले फटाका था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गोर झोला आनला बाटी ना कब्बू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कब्बू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला जस कटरास बाटिन ये बुढ़ो ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रट गई झोला उद्योग में रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिकला झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।

0: बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराई। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उनका संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वानन्दे घोज आगिले न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनैना उने ना पट्टा नि पैना त
2: अधि गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
1: तुहार बाट अस्तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाका आन्छे के कत्रा सुघर बनाकन लबाटी
2: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भाटवट खाई आओ जायका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई। सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
1: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए और ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए। मोबाइल नंबर 98-684-41-208 और 98-486-39-261।

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सधैं भरिलाई।
1: आई बुढल्ला सुन्तो कि नै वानन्दे भोज आगिलिन अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनेना पट्टा नि पैना त
2: अजी गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
1: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नि सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बना कान्छे कि कत्रा सुघर बना कन ल बाटी
2: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भाटवट खाई हो जाइका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई
3: सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
1: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 9864141208 ओ 9846239161
4: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो का कना हो। बाबा फिर उस टपाटी गटीलो ठाउं से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी, जरम भर भर भर थी रहत।
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से। वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गोर झोला आनल बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन। ये बुढ़क ढंग कब्बू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई।
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रट गई झोला उद्योग में। रट गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है मरम फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।
3: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण वडाहरूमा रहेका सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्नुपर्ने भएकोले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको परिचय पत्र, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायतका सम्पूर्ण कागजात सहित लाभग्राही स्वयं तपछिल बमोजिमको नवीकरण शिविरमा उपस्थित भई भत्ता नवीकरण गर्न गराउन हुन अनुरोध छ।
4: शिविर सञ्चालन हुने स्थान कर्णाली मावि टिकापुर साउन 11 र 12 गते,
3: सरस्वती मावि बनगाउँ साउन 13 र 14 गते,
4: जनजाति आधारभूत विद्यालय ज्योतिनगर साउन 15 र 16 गते,
3: वडा नम्बर 4 को कार्यालय साउन 17 देखि 19 गते सम्म,
4: वडा नम्बर 2 को कार्यालय साउन 20 देखि 25 गते सम्म,
3: वडा नम्बर 3 को कार्यालय साउन 26 देखि 28 गते सम्म,
4: वडा नम्बर 5 को कार्यालय साउन 29 देखि 31 गते सम्म,
3: वडा नम्बर 6 को कार्यालय भदौ 1 गते देखि 3 गते सम्म,
4: वडा नम्बर 7 को कार्यालय भदौ 4 देखि 6 गते सम्म,
3: वडा नम्बर 8 को कार्यालय भदौ 7 देखि 9 गते सम्म,
4: र वडा नम्बर 9 को कार्यालय भदौ 10 देखि 11 गते सम्म।
3: सबै वडाहरूमा शिविर सञ्चालन हुने समय बिहान 8 बजे देखि साँझ 5 बजे सम्म।
5: याद गर्नुहोस्, 60 वर्ष उमेर नपुगेका विधवा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूले अर्को विवाह नगरेको सिफारिस र अपाङ्गता भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको हकमा अपाङ्गता परिचय पत्र अनिवार्य साथमा लिई आउनु पर्नेछ।
3: थप जानकारीको लागि टीकापुर नगरपालिका र सम्बन्धित वडा कार्यालय, सम्पर्क नम्बर 98485018888, 98485015 र 98486134434।
4: टीकापुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।

जय गुरु बाबा। घर घर की आवाज, बस्ती बस्ती की आवाज, अपन के मन की आवाज, समुन्नत समाज के लक्ष्य मावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीका प्रयत्न एक से एक मेगा हर्ज की विद्युत तरंग मार्फत कार्यक्रम निशाना के सला के बैठल सकू रेडियो प्रेमी मई घर श्रोता संग स्वागत के संगी अभिवादन करे चाहो मामी छन। के बैठ टिक बैठ के साथ देते बाबू रत्नापुर मगर और यो रेडियो टीका प्रयत्न एक से एक मेगा हर्ज वस्ते की हमारे वेबसाइट www.tikaprayatn.org मोबाइल एप टीका प्रयत्न एप हमारे पात्र नेपाली पात्र मार्फत अपने ग्रामन सुने सकती कारण जानकारी करती बारू जे जहां भी खेतों में बारी में दुकान में मकान में काम में धंधा में बिजी में विपटल में यात्रा में जहां रहे थे कार्यक्रम में सहभागी जनई भी कारण मैं आप लोग अर्जी अनुरोध और निवेदन करना चाहता हूं। तो कार्यक्रम में सहभागी जनई टेकर भी कार्यक्रम आई टेकर भी अपने कर हमारे रमाइलो सहभागिता रमाइलो गफ के गफ हुई गाल से अपने कर हमारे रमाइलो बातचीत हुई कारण मैं आप लोग जानकारी करती बारू। तो फटाफट चाहिए आज एक दिन हमारे संगे चाहिए गप करेबी सावन महीना के दोस्रो मतलब सोमवार के पर आज दोस्रो सोमवार हो ई महीना के हम दोस्रो सोमवार आज फेन मठ मंदिर में एकदम भीड़ हुई महिला दीदी बहनों के व्रतालु दीदी बहनों के चाहे पूजा पाठ करना क्रम हुई और पूजा फेकर गिल दीदी और व्रत बैठल दीदी बहनों के एकदम ढेर ढेर शुभकामना बा ई सावने व्रत के उपलक्ष्य में और जितना बहन बाटी वहां एकदम कुशल मंगल आराम रबी और जहां रबी स्वस्थ रबी व्यस्त रबी खुशी रबी कहना चाहम गाटी। और आजकल मौसम कुछ सुहाना सुहाना बा कहूं पानी पड़ती बा कहूं मतलब घाम करती बा अस्त हो टीकापुर में फेना भाई कुछ कुछ पके थे आज पानी पड़त की कना बा पानी पड़ना असक असक मौसम करता फेन घाम करता फेन पानी पड़े असक करता अब का हुई ढेरी जे जहां रहते फिर रमाइलो करे कार्यक्रम में सहभागी जनाए आज सोमवार हो सोमवार में निशाना नए लगा आज सावने व्रत के बारे में हमें आज बात बताओ कहे कि ई महीना सावन महीना के हो एक वर्ष में एक सौ बटवाई मिलत तो हमने कहीं नहीं बटवाई ना कि कैसे निशाना तो हम और दिन फिर लगाई सकब तब मारे अठी बार कार्यक्रम में डायल करते कर भी सावन के व्रत बैठल दीदी बहनों को शुभकामना देख लग आइए कर भी कार्यक्रम के शुरुआत में श्री गणेश करब एक रमाइलो गीत गीत के पास महीने बाटो डायल करते कर भी सुनने 91.5 61.255 लाइन खोल रही बात

झिम रिम झिम पानी बरसे मनुआ मोरे लागे तरसेरे। पके थे सुहाना मौसम पानी बरसत तब जाके अस्त महसूस हुई। ये मौसम कना चीजे कुछ रमाइलो चीज हो, ये मौसम कना चीजे मन बदलना चीज हो, मौसम कना चीजे कुछ मन है रह रंगित बनाना चीज हो, अपने को पता ही है। और मौसम जब सुहाना सुहाना रह तो हरेक चीज करना मन लागत का, जस्ता घूमना मन लगना, रमाइलो करना मन लगना, एक्चुअली मतलब एंटरटेन करना मन लागत का जब मौसम फिर सुहाना रहता, हरेक चीज खाना लगना पीना मन लगना या हरेक चीज मतलब मन में जो चीज नुकल रह उसी चाहिए हमन खोलू खोलू लगना रहत का जब सुहाना मौसम सुहाना पल घड़ी रहत तब उ पल चाहिए रमाइलो रहत। ओके जे जहां रहल से अपन कार्यक्रम होता सहभागी जन भी 091-5-61-255 अथवा 09156125 लाइन एकदम खुला बा कार्यक्रम में सहभागी जन भी कल से अपने को हमारे रमाइलो गफी रमाइलो बातचीत करब का नाम है आप जानकारी करती बाटो। और संघारी सुहाना मौसम में अपने के दोपहर समय हो अल्छी समय हो, आज तो पके भी लागत मीन अपने को अल्छी नहीं लागत हुई, आज कुछ सुहाना मौसम बा रमाइलो करना मौसम बा तो ई बेला में अपने को हमारे रमाइलो गई दोपहर के समय हो ई समय है सदुपयोग करे लग जहां हुई भी व्यापार व्यवसाय के बावजूद बिजी हुई भी व्यापार करती हुई भी रेडियो सुनती हुई भी या लुगा सीती हुई भी काम करती हुई भी गृहिणी दीदी बहनों के नाश्ता बनाती हुई भी या नाश्ता खाने तैयारी करत हुई भी जा करत हुई भी यात्रा में हुई भी रेडियो सुनत हुई भी कल से बिल्कुल कार्यक्रम में साथ दीदी का नाम आया दुकान अर्जी अनुरोध और निवेदन करना चाहता हूँ। तो फटाफट चाहिए डाल कर कर भी 091-5-61-255 अथवा 091-5-61-255 लाइन एकदम खुला था फटाफट डायल कर भी और कार्यक्रम में सहभागी जनेबी का नाम है अपने अर्जी अनुरोध और निवेदन कहना चाह रहा हूँ। तो फटाफट डायल करते कर भी कार्यक्रम में सहभागी जनेटे कर भी का नाम है अपने अर्जी कहना चाह हम कहते ठाव गीत जोड़े बी रमाइलो के अलग ई गीत अपने गीत के बाद समय नहीं बैठू डायल करते कर भी 091-5-61-255 लाइन खुला था।

हजुर, रिमझिम रिमझिम बरसातमै बिल्कुलै रमाइलो गीत जोडी कार्यक्रममा बाटोमा मिसन अमिके साधारण बाबु रत्नापुर मगर और यह रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज जस्तो कि हाम्रो वेबसाइट www.tikapurfm.org मोबाइल एप टीकापुर एफएम एप हाम्रो पात्र और नेपाली पात्र मार्फत आफ्नो सुनिश्चित इन्टरनेट के पहुँच र सँगारी आफ्नो ठाउँ से तो कार्यक्रम में चाहिए सहभागी जनता कर भी कार्यक्रम में इटे कर भी अपने को हमारे रमाइलो गफी रमाइलो बातचीत ही कानवे आप जानकारी करती बारू तो फराबर चाहिए अपने को हम डायल कर भी 091-5-61-255 के लाइन एकदम खुला बा कानवे अपने को अर्जी अनुरोध और निवेदन कहना चाहूँ तो जे जहां हुई भी जोन ठाव में हुई भी कना कहीं के मतलब कार्यक्रम में चाहिए विशेष करके सहभागी जनाई भी कना मैं आप लोग निवेदन करम कहे कि विशेष करके आप लोग के संगे संगे हमरे रमाइलो गप करना हो तो रमाइलो गप संगे संगे हमरे रमाइलो बातचीत से कहना हो तो फराबर चाहिए डायल करते कर भी 091-5-61-255 अर्थात 091-5-61-255 लाने के लिए खुला बाप ने कर हमारे रमाइलो गप करीब करीब 1:45 बजे हम संगे संगे मजा मजा गीत संगीत फिर मैं आप लोग के संगे संगे सुनने पर बातू तो डायल करते कर भी कार्यक्रम में सहभागी जनाइते भी कनामय जानकारी करें ना हम कहती ठीक ठाक की जोड़ा गीत के पास मैंने बैठू डाल करते कर आप सुने 91-5-61-255 लाइन खुलेगा

सावन की रिमझिम बरसात में बिल्कुल रमाइलो गीत जोली कार्यक्रम में अपने होगा गला कार्यक्रम में भर्खर रेडियो खरौली विकल से यो रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज जैसे कि हमारे वेबसाइट www.tikapurfm.org मोबाइल एप टीकापुर एफएम एप हमारा पात्र मार्फत प्रोग्राम सुनिस ठिकाना में आपको जानकारी करते बाटू जे जहां रवि क्षेत्र में बारी में दुकान में मकान में काम में धंधा में बिजी में विपटाल में जहां रहते कार्यक्रम में सहभागी जन जे कार्यक्रम में अर्जी करम विशेष करके अपने के संगे संगे हमें रमाइलो गप करना हो आज के दिन कहे कि हम निशाना नहीं लगे थी कहे कि सावन के दोसरो हफ्ता हो आज दोसरो हफ्ता आज दीदी बहनों के मठ मंदिर में जाके पूजा करल हुई भी शायद पूजा पाठ करल हुई भी कहे कि व्रत बैठल हुई भी तमारे ये महीना भर शिकार मछार अंडा और लहसुन प्याज नहीं खा के बैठना व्रत हो तो अपने उनके फिर बैठल हुई भी लागत नहीं और आज पूजा पाठ फिर मठ मंदिर में भीड़ भाड़ फिर हुई लागत नहीं तो जहां रल से फिर कार्यक्रम सुन के कहीं साबे भी घर में हुई भी खेतों में बारी में दुकान में मकान में काम में धंधा में बीज में बीपीएल में यात्रा में जहां रवि जौन ठाव में रवि वे ठाव से हमन याद कर भी समझवी का नमय दुकान कहना चाहते कहा जी अरे फिर ठाव की जोड़ के पास मैंने बाटू डाल करते कर भी 091-561-255 था 091-562-555 लाइन खुलेबा रेडियो छोड़ के कहो पे नहीं जब एंजॉय करी एक ठाव रमाइलो गीत सुन के गीत के पास समय आई थी बाटू

हजुर बिल्कुल रमाइलो गीत के पाछ फेन्स स्वागत करती सँगै थियो पर एकैखी ब्रेक लिन बेला होस् कलबा एकैखी चाहिँ व्यापारिक विश्राम विश्राम के पाछ मैले बाटु रेडियो सरको कहुँ नै जीबी एकैखी सर्ट कमर्सियल ब्रेक ब्रेक के पाछ मैले बाटु डायल गर्दै गर्बी 91.5 61255 लाइन खुलेबा तसम्मलाई एकैखी व्यापारिक विश्राम

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा के होस्ट पार्टी गतिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हेरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुढ़ो ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमार यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जस्ते स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिकला झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।
3: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में नया विद्यार्थी भर्ना खुल्यो।
4: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में स्नातक तह का विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2083-84 में नया विद्यार्थी भर्ना का लागि प्रवेश आवेदन फारम वितरण भइरहेको बेवरा संबंधित सबै का लागि जानकारी गराइन्छ।
3: संकायहरू व्यवस्थापन संकाय तर्फ का शैक्षिक कार्यक्रमहरू
4: बीबीए र बीबीएस ऐच्छिक विषयहरू एकाउन्टेन्सी फाइनान्स र मार्केटिङ
3: प्रवेश परीक्षा संचालन हुने मिति र समय बीबीए का लागि साउन 17 गते बिहान 8 बजे बीबीएस का लागि साउन 17 गते बिहान 10 बजे
4: शिक्षा शास्त्र संकाय बीएड ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश नेपाली हेल्थ एन्ड म्याथमेटिक्स
3: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे
4: मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय बीए ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश डेभलपमेन्ट स्टडीज सोसियोलोजी एन्ड इकोनोमिक्स
3: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते बिहान 8 बजे कक्षा सञ्चालन भदौ 1 गते देखि
4: क्याम्पसका विशेषताहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट 1 वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन क्यूए प्राप्त सरकारी क्याम्पस
3: कुल विद्यार्थी भर्नाको 25% विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको
4: न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनमा जोड दिइने
3: पीएचडी तथा एमफिल गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट प्राध्यापन गराइने
4: आईसीटी इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न नन क्रेडिट कोर्सहरूका कक्षाहरू तथा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने
3: उपचार कक्ष ई लाइब्रेरी फ्री वाइफाई प्रोजेक्टर डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सहितका कक्षा कोठा शुद्ध खाने पानी प्राथमिक उपचार कक्ष व्यवस्थित क्यान्टिन खेल मैदान लगायत सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको
4: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त देशभरिका अन्य क्याम्पसहरूमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिने
3: कक्षा 12 को पूरक परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले समेत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्
4: थप जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-088 र 561-088
3: टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस टीकापुर कैलाली
0: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैब पाछा से शुरू करल मने घर सिजार सेकल
1: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नहीं करत का कहीं ना हो का
0: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनाई लबाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्त बनी हो ना वट्र फे पटानी हुई कि गोंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए
5: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
6: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 98-48-51-43-26
7: ना छावा सांप कुछ नहीं कराए सम सांप कुछ नहीं करता ले वो अपने चल गए कुछ कराए वो सब कुछ सांप बिखा थे नहीं रहता
8: बिखा हो कि नहीं हो कसी कति ना दाई ले
9: नेपाल में पा दिना बिखा सांपन का विषय में सुन एक थोड़ा ठह गरे जोन खास कह रातिक समय में घर भीतर बैठ सकता ई कटला से निबाई फे सकत तर कटलक पास देह भाग जो निचलना कह सास फैर जो निशेकना में से लक् हो सकता और रथ डोम जोन बड़ा रिसाहा मेहरिक रथ फाट फूले डोम साप दिन व रात दुनू में देख पड़ना वो खास कह संजा बिहान देख पड़ निक्र कटल से फिर लक्वा हुई था वो और रथ कैली जाटक साप निक्र कटल कल से कटलक भाग सुई था वो बड़ा कर्र से बैठे था रकत फिर पाती होकर रकत बहना हुई था उसे का हमार देशक तराई सबकू भूभाग में पा देना बगोपने न फुनका रहना बाधे साप ई साप दसलक बेरहमेन कम केल पा दे था तर हिकन कटाई एकदम खतरनाक रहा
3: बर्खा छ्या को अनाज बिपिना समय में सापन का कटाई अथवा दसाई का घटना झूल बिना कथा बहिया वो और प्राकृतिक प्रकोप का कारण सापन का बचारा नासिबे सापन का दसाई का घटना झूल बिना कर लग पा जाए
10: झूल जसिन सापन का दसाई हानिकारक नी रहा वह फिर यदि सपवा दस डारल कल से तुरंत लगभग उपचार केंद्र में जा जाए पर
7: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग वो लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कैसे पता लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org मा जाख आवश्यक जानकारी लिए सकती था
11: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिटटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: टिकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुल्यो।
1: टिकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तहका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा शैक्षिक सत्र 2083-84 नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश आवेदन फारम वितरण भइरहेको व्यवहार सम्बन्धित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ।
0: संकायहरू व्यवस्थापन संकाय तर्फका शैक्षिक कार्यक्रमहरू
1: बीबीए र बीबीएस ऐच्छिक विषयहरू एकाउन्टेन्सी फाइनान्स र मार्केटिङ
0: प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र समय बीबीए का लागि साउन 17 गते बिहान 8 बजे बीबीएस का लागि साउन 17 गते बिहान 10 बजे
1: शिक्षा शास्त्र संकाय बीएड ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश नेपाली हेल्थ एन्ड म्याथमेटिक्स
0: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे
1: मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय बीए ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश डेभलपमेन्ट स्टडीज सोसियोलोजी एन्ड इकोनोमिक्स
0: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते बिहान 8 बजे कक्षा सञ्चालन भदौ 1 गतेदेखि
1: क्याम्पसका विशेषताहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट 1 वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन क्यूए प्राप्त सरकारी क्याम्पस
0: कुल विद्यार्थी भर्नाको 25% विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको
1: न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनमा जोड़ दिइने
0: पीएचडी तथा एमफिल गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट प्राध्यापन गराइने
1: आईसीटी इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न नन क्रेडिट कोर्सहरूका कक्षाहरू तथा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने
0: उपचार कक्ष ई लाइब्रेरी फ्री वाईफाई प्रोजेक्टर डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सहितका कक्षा कोठा शुद्ध खाने पानी प्राथमिक उपचार कक्ष व्यवस्थित क्यान्टिन खेल मैदान लगायत सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको
1: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त देशभरिका अन्य क्याम्पसहरूमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिने
0: कक्षा 12 को पूरक परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले समेत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्
1: थप जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-088 र 561-088
0: टिकापुर बहुमुखी क्याम्पस टिकापुर कैलाली
2: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैब पाछे शुरू करल मने घर सिजार सेकल
3: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परे सान हो गिल बाटू मिलबो नी करत का कहना हो का
2: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना पटा सुगुर बनेल बाट अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना वट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ घूम जाए था पाए
4: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
5: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 98-48-51-43-26

0: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाय
2: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
4: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्
5: थोपा थोपामा शुद्धता अत्याधुनिक अमेरिकन यूवी र ओजोनेटेड सहित रिवर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
6: प्योर ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ
4: डेलिभरीका लागि
6: ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल
4: टीकापुर कैलाली
7: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9870101072
8: स्वास्थ्यका लागि पानी

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज था, कहा कना हो बाबा के वस्त बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरत।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बर बर
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से नाम था,
0: कहाँ से लंग वो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला जस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुही।
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-2373।
3: आई हो बड्डो घर कहिया सीध जाइब, पाँच से शुरू करल मने घर सीध जा सकल।
4: अरे का करू री बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू, मिलबो नहीं करत का कहना हो का
3: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना कटा सुगुर बनेला बाट अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुई कि गोंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए।
5: UPVC ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
6: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली, प्रोपराइटर मोहन राज भाट, मोबाइल नंबर 98484-2376।

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल
0: तू वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तू यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुंजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800046774417
4: ए सन्तेकी आमा पर कान्छा छालाको ब्याको न्यू त आएको छ कसो त जाने विचार छ कि नै त
5: आफ्ना कान्छा भाइको बे नगरजन पन भएन जाउँ भने भयाको मंगलसूत्र बन भाँची गयो
4: यो टिका लागि त सामुएल जोलस बनेको हैन बरु अहिले जाउँ एक दुई दिनमा त फ्याट्टै बनाइहाल्ला छन् त्यहाँ
5: आज त सन्त्याका बाले मनकै कुरो हर्यो हट त बाई जाउँ
6: सामुएल ज्वेलर्स सुनसादीका सम्पूर्ण डिजाइनका गरगहना बनाउनुका साथै सुनसादी खरिद बिक्री पनि गरिन्छ प्रोप्राइटर तिहारी सिंह सुनार सम्पर्क नम्बर 9868 1208 9486 39261

सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संजय 5 बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपनी ओकन स्वागत बा। खोज खबर से मई सीता चौधरी की राम राम। अपने उक्र सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हमारे पात्र और नेपाली पात्र में सुनती रह बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य शीर्षक कर्णाली जोखिम घटना कानून संशोधन आवश्यक हुए जनप्रतिनिधि क्रमका है। बाल बालिका के सवाल देहर बाल संरक्षण में संस्था स्थानीय पालिका सह कार्यकर्ती। बटेरी में घास कटना क्रम ढुंगाला के 22 वर्षीय युवती की मृत्यु। ओ विश्वकप लीग 2 नेपाल नामीबिया विरुद्ध बोलिंग करती। जल तथा नदीजन्य स्रोत उपयोग करके आर्थिक लाभ लेना सिक्ना संभावना हुए सके कर्णाली लदिया जोखिम दुख दिलकटी जनप्रतिनिधि चिंता जनर कर्णाली लदिया कैलाली तर्फ के टीकापुर नगरपालिका जानकी गांवपालिका बर्दिया तर्फ के राजापुर नगरपालिका गेरुआ गांवपालिका में वर्षे निकटन डुबानो बगान करती हलवा लदिया बीच में टापू बोलक लदिया धार परिवर्तन करके किनार में कटानी हुई कर्णाली के सक्कू पानी पश्चिम भंगाल में बहना बर्दियातर्फ लद्याजन्य पदार्थ थुप्रो पानी के प्रभाव नई हुलक पानी अभाव फुटी रहा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा के सदस्य लक्ष्मण किशोर चौधरी कर्णाली लद्या के खेतों में सिंचाई निर्माण के लाग ढुंगा गिट्टी बारुआ मिल से फे दुख व तनाव मफे ओत्रहन डेलक बोटिलो बाट यहां लद्या के कर्णा कटान रोकना कैलाली तर्फ राष्ट्रीय गौरव के रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना हो बर्दिया तर्फ राजापुर सिंचाई आयोजना के काम करती रहलबाट आयोजना के इंजीनियर नीलम थापा बोटिलोट वन अधिकृत जनक उपाध्याय वर्तमान कारून निकुंज क्षेत्र वो वन क्षेत्र कोनफे छून नई पैना हो तर चोरी तस्करी हुटी रहना हुलक अवस्थाइलक बोटिलोट लद्या के बीच में टापूमूलक लद्या किनार में धकिल्टी रह कारण आजकल कर्णाली लद्या टीकापुर नगरपालिका 7 स्थित सती कर्णाली सामुदायिक वन के क्षेत्र में वडा नंबर 5 स्थित भैरवनाथ सामुदायिक वन क्षेत्र में कटान करती हलवा वन कटवा कटान में भर्ती गलक बरिया बस्ती में पैठना खतरा बा कर्णाली बरिया बेला बेला में बस्ती में पैठना नहर बगैना करलक।

0: के छिटी हुना करदै रानी जमरा कुलदेश सिंचाई योजना के सूचना अधिकारी तथा सीनियर डिवीजन इंजीनियर रामकृष्ण घोरासैनी भैरवनाथ बनुआ क्षेत्र में हुईटी रह लद्या कटार रोकना 2 करोड़ रूपया खर्च न लग्न को लंकीचुह नगरपालिक ढुंगा प्रमाणित नेकलक घिला के कायल बोटेल संवाद समूह के पहल में दुनू प्रदेश के मुख्यमंत्री स्तरीय बैठक के सुझाव समिति गठन करला रही 2081 पुष 3 गते गठन हुलक समिति 2081 में त्यसम अध्ययन प्रतिवेदन बनाके वनुआ व निकुंज विभाग में पुग्ला समिति के कर्णाली देखे पानी गिरुआ कर्णाली में आधा आधा बढ़ना बर्दिया राशि निकुंज के 9 ठाव थुप्रोला ढुंगा गिट्यूट खनन करपना रानी जमरा मोहनसंग तरमहरू खनन बन्ना कना बर्दिया राशि निकुंज के लद्या निमावली संशोधन करपना कर्णाली देखे एकीकृत तटीय व्यवस्थापन योजना बनना कार्यान्वयन करना सुझाव दिलाट सरकार परिवर्तन जेम जे आलदनो निर्वाचन के कारण प्रतिवेदन के सुझाव के अनुसार राष्ट्रीय निकुंज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 निमावली 2029 वन ऐन 2076 निमावली 2079 मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन निमाली विपद मैत्री बनना काम शुरू हुई नई सकल हो अध्ययन समिति के रहलक जानकी गांवपालिका के अध्यक्ष गणेश चौधरी लद्याजन्य पदार्थ के डर रेट प्रदेश तो के रोयल्टी लेना क्षेत्री पालिका के बिहोना काम करलक कठिनाई हुलसे संघ के मुख ताकपना जोखिम घरेना चुनौती हुलक बुटीलोट छलफल में सहभागी प्रतिनिधि सभा सदस्य कोमल लियोली वर्तमान सरकार नागरिक के अप्ठारो संबोधन करना लगलग बुटीलोट कर्णाली लद्या की जोखिम घटेना लद्या उपभोग संरचन व्यवस्थापन करना कानून संशोधन हुईना सहज हुईना पर्ना संवाद समूह के सहजकर्ता सुशील बस्नेत के काहे रहलबा बालबालिका के सवाल समस्या धेरवा यहां के बालबालिका के सवाल बाल अधिकार सुनिश्चित बाल संरक्षण हिंसा शिक्षा बाल विवाह लागू औषध पोषण स्वास्थ्य तथा मानसिक समस्या अपाङ्गता जसिन समस्या बाल संरक्षण अधिकारमा स्थानीय पालिका संघ संस्था सहकारी करके काम करती रहलबाट भजनी नगरपालिका के बाल बालक मन सिंह चौधरी बाल बालिका के सुरक्षा कला सचेतना के कार्यक्रम करना बाल भेला करना जसिन कार्य करपना बोटेलबाट बालिका श्री बीसी ओडा भेला बाल भेला करके बाल बालिका समस्या पहचान करके समाधान करपना बोटेलवाटी भजनी के बलवंत सिंह बाल बालिका के करती हल कार्यवार निगरानी करना आवश्यक रलक बोटेलवाट बाल संरक्षण अधिकार के लायक धीरे सिंह संघ संस्था पालिका सहटी रहलवा टीकापुर मरलक बाल कल्याण संघ बाल संरक्षण में काम करती रहलवा बाल कल्याण संघ के संरक्षण अधिकृत इंद्र राजा जोशी बाल कल्याण कैलाली के 5 पालिका 24 वडा में बाल संरक्षण के लिए काम करती रहल बोटेलवाट सुदूरपश्चिम प्रदेश बाल अधिकार परिषद के सदस्य प्रेम बुधा सामाजिक विकास मंत्रालय सुदूर के बाल बालिका के अवस्था पत्ता लगे समिति बनेला कुछ काम हुईना आशा पढ़ेलक बुटीलोट वहां के अनुसार तराई और पहाड़ के जिला में तुलना कलक फरक फरक खालके सवाल देखलक ओ महापालिका हुकुल के बाल संरक्षण में काम करपना बुटीलोट भजनी नगर पालिका के महिला विकास अधिकृत रिजू चुकाहा चौधरी बाल संरक्षण संबंधी के घटना पालिका महिला से बाल अधिकार समिति के बैठक में निर्णय करके बाल बालिका के आवश्यकता अनुसार सघना कति रह बोटिलोटी टीकापुर नगर पालिका की महिला बाल बालिका शाखा प्रमुख संगीता शाह के अनुसार पालिका में वड़ा स्तर में बाल अधिकार समिति गठन कलक बाल बालिका के समस्या संबोधन करना उद्धार स्वास्थ्य उपचार शिक्षा में सघना सहसुलभ बोटिलोटी खोज खबर में घरी विश्राम विश्राम पास फिर से सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
1: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में नया विद्यार्थी भर्ना खुल्यो
2: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में स्नातक तह का विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरू में शैक्षिक सत्र 2083-84 में नया विद्यार्थी भर्ना का लागि प्रवेश आवेदन फारम वितरण भइरहेको ब्यौरा सम्बन्धित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ
1: संकायहरू व्यवस्थापन संकाय तर्फका शैक्षिक कार्यक्रमहरू
2: बीबीए र बीबीएस ऐच्छिक विषयहरू एकाउन्टेन्सी फाइनान्स र मार्केटिङ
1: प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र समय बीबीए का लागि साउन 17 गते बिहान 8 बजे बीबीएस का लागि साउन 17 गते बिहान 10 बजे
2: शिक्षा शास्त्र संकाय बीएड ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश नेपाली हेल्थ एन्ड म्याथमेटिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे
2: मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय बीए ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश डेभलपमेन्ट स्टडीज सोसियोलोजी एन्ड इकोनोमिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते बिहान 8 बजे कक्षा सञ्चालन भदौ 1 गतेदेखि
2: क्याम्पसका विशेषताहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट 1 वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन क्यूए प्राप्त सरकारी क्याम्पस
1: कुल विद्यार्थी भर्नाको 25% विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको।
2: न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनमा जोड दिइने।
1: पीएचडी तथा एमफिल गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट प्राध्यापन गराइने।
2: आईसीटी इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न नन क्रेडिट कोर्सहरूका कक्षाहरू तथा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने।
1: उपचार कक्ष, ई लाइब्रेरी, फ्री वाइफाई, प्रोजेक्टर, डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सहितका कक्षा कोठा, शुद्ध खाने पानी, प्राथमिक उपचार कक्ष, व्यवस्थित क्यान्टिन, खेल मैदान लगायत सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको।
2: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त देशभरिका अन्य क्याम्पसहरूमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिने।
1: कक्षा 12 पूरक परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले समेत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्।
2: थप जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-088 र 561-088।
1: टिकापुर बहुमुखी क्याम्पस, टिकापुर, कैलाली।
0: के तपाईलाई थाहा छ,
3: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन 100 वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
0: हो र?
3: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
0: अनि
3: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं।
0: के छ त विकल्प?
3: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
0: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
3: हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
0: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
3: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सरसफाई शाखा, टिकापुर, कैलाली।
4: दाजु हेर्नुहोस् न, भाउजूलाई बिरामले च्याप्दै गइराखेको छ। तपाईँ भने यहाँ कुनै मतलबै नगरी बसिराख्नु भएको छ। भाउजूलाई कतै के भइहाल्यो भने रुनु होला पछि धुरु धुरु।
5: के गरौँ त, म यत्रो उपचार गरिसके, कति ठाउँमा लगिसके, तर निकै हुन्न।
4: दाई बरु एकपटक टिकापुरको सत्कार मेडिकल सेवामा जचाउने हो कि के थाहा, त्यहाँ उपचार भइहाल्छ कि?
5: तैले भन्छस् भने लौ जान्न त त्यो सत्कार मेडिकलमा एकपटक।
6: सत्कार मेडिकल सेवाका खास सेवाहरू: ओपिडी सेवा, भिडियो एक्सरे सेवा, एक्सरे सेवा, ल्याब अर्थात् प्रयोगशाला सेवा, ईसीजी सेवा, मेडिकल सेवा, ईएनटी सेवा, प्लास्टर सेवा। बिरामी जाँच्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म। डाक्टर हेमन्त स्वार, टिकापुर, ब्लक नम्बर 7, गोल पार्क नजिक, गुम्बा रोड, टिकापुर। फोन नम्बर 091-560-095, मोबाइल नम्बर 98-484-27-359।
0: बडेरीमा घाँस गर्न क्रममा उपर्से खसक ढुङ्गा लाके युवतीकी घटना स्थलमा मृत्यु हुर्वा। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैटरीकी अनुसार दशरथ चन्द्र नगरपालिका एक कलोनीकी 22 वर्षीय अस्मिता भट्ट सोमबार बिहानकी घाँस गर्न सुनिया गाउँपालिका 2 स्थित कैल डाँडा पुग्न रही उहो कर्म जमीन भाँसके उपर्से खस्तक ढुङ्गा लगलग बिहानकी करिब 9:30 बजे हो घटनास्थलमा उहाँकी मृत्यु हुलक प्रहरी जनाइलवा। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैटरीकी प्रवक्ता तथा प्रहरी निरीक्षक सुरज सिंहकी अनुसार मृतकी शव पोस्टमार्टम के लागि जिल्ला अस्पताल लैजान तयारी हुटिरहेवा। घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी लग प्रहरी जनेलवा। अस्नरत प्रधानाध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी हो सरकारी टोली बीच हुलक वार्ता मस्या बुधे सहमति के मस्यौदा तयार पलवा। आइतबार सहमति हुलक नै सकलक, आज फेर से हुलक वार्तामा दुनु पछि 8 बुधे सहमति मस्यौदा तयार पलबाट मस्यौदा अनुमोदन केला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह हो। शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेल पठेलक बा वार्ता टोली सरकार जवाब हुइटिरहल। डाक्टर केसी के सहयोगी एवं वार्ता टोली के सदस्य डाक्टर अमृत जैसी जानकारी दिलाबाट मोटामोटी सहमति हुले से फेर हटा हस्ताक्षर हुन बाँकी रहलक। उहाँकी कहाई थप्ना 8 बुधे मध्ये कुछ थप घट हुई सिक्ना सरकारी टोलियो डाक्टर केसी के बीच शहीद दशरथ चन्द्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा चालू आर्थिक वर्षमा 300 के अस्पताल सञ्चालन गर्न, चालू आर्थिक वर्षमा एमबीबीएस पठन पाठन सञ्चालन गर्न सहमति हुलक मस्यौदा तयार पर्नबाट स्तम्परके रजिस्ट्रार डाक्टर भीमबहादुर चन्द, पदमुक्त कनाउ उपकुलपति डाक्टर सुनिल कुमार जोशी, थाप धर्के एनम स्वार्थ बुझ्ना व्यवस्था के प्रावधान हटेन लगायत कि विषय में सहमति के मस्यौदा तैयार पर्लक पठिलो केसी पांच बुधे माघ धरती धनगढ़ी में अनशन करती रहलवा राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार चिकित्सा शिक्षा पूर्ण गैरनाफामूलक बनैना कानून व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन करपर्ण शहीद दशरथ चन्द्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पदाधिकारी उपकुलपति और रजिस्ट्रार नियुक्त मदर करपर्णा उहाँकै कहाई मागमा खोज खबरमा फेरसे विश्राम विश्राम पाछ फेरसे विश्वतिर विश्वामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
4: दाजु हेर्नुहोस् न भाउजूलाई बिरामले च्याप्दै गइराखेको छ तपाईँ भने यहाँ कुनै मतलबै नगरी बसिराख्नु भएको छ भाउजूलाई कतै के भइहाल्यो भने रुनु होला पछि धुरु धुरु
5: के गरौँ त म यत्रो उपचार गरिसके कति ठाउँमा लगिसके तर निकै हुन्न
4: दाइ बरु एक पटक टिकापुरको सत्कार मेडिकल सेवामा जताउने हो कि के थाहा त्यहाँ उपचार भइहाल्छ कि
5: तैले भन्छस् भने लौ जान्न त त्यो सत्कार मेडिकलमा एक पटक
6: सत्कार मेडिकल सेवाका खास सेवाहरू ओपीडी सेवा भिडियो एक्स रे सेवा ल्याब अर्थात् प्रयोगशाला सेवा ईसीजी सेवा मेडिकल सेवा ईएनटी सेवा प्लास्टर सेवा बिरामी जाँच्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म डाक्टर हेमन्त स्वार टिकापुर ब्लक नम्बर 7 गोल पार्क नजिक गुम्बा रोड टिकापुर फोन नम्बर 0915600095 मोबाइल नम्बर 98484273059
7: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैबो पाछसे सुरु करल मने घर सिजार सेक्ल
8: अरे का करुरी बुढिया कठुवा खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु मिल्बो मिल्बो निकरत का कैन हो का
7: मिस्तरान बर्जन उकना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनैला बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो ना ओट्रफे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढो हो न कबू कहुँ घुम जाए त था पाए
9: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिसन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
10: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541 4326
11: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा बच्चादेखि बुढासम्मा टाउकोदेखि घुँडासम्मको उपचार
12: टिचिङ हस्पिटलबाट एमडी अध्ययन गरी अनुभव प्राप्त फ्यामिली फिजिसियन डाक्टर सरोज खनालबाट बिरामीको जाँच तथा उपचार हुँदैछ
11: आरोग्य मेडिकलमा पाइने सेवाहरू
12: दीर्घ रोगीहरू उच्च रक्तचाप मधुमेह थाइराइड दम सीओपीडी
11: नवजात शिशुदेखि वृद्धसम्मको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा
12: बालबालिकाको स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार
11: महिलाका समस्या गायनोलोजिकल समस्या गर्भावस्थाको जाँच
12: सामान्य रोग ज्वरो खोकी पेट दुखाई लगायतको उपचार
11: आकस्मिक रोगको प्रारम्भिक उपचार र व्यवस्थापन
12: र हाम्रो यहाँ भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ
11: सम्पर्क आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुर
12: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म र साँझ 4 बजेदेखि 8 बजेसम्म
11: सम्पर्क फोन नम्बर 9868800008 र 9825637772
0: विश्राम पाछा फिर्से स्वागत बा आप खेल खबर नेदरल्याण्डसम्म जारी आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लीग टू अन्तर्गत त्रिकोणात्मक श्रृंखला के तेस्रो खेलमा नेपाल आज नामिबिया विरूद्ध प्रतिस्पर्धा कर्तीबाट नेपालबाट जितके पहिलो बलिङ कर्तीबाट आज दुई खेलमा लगातार हर्ल खेपके नेपाल लीग टू के शीर्ष चारमा रहन आफके खेल जित पर्ना दबावा लीगमा 30 खेल सेक्लक नेपाल 24 अङ्क सहित 5औं स्थानमा बा समान खेलमा 124 नै अङ्क बढ़ेलक नामिबिया 6औं स्थानमा बा जितना टोली 5औं स्थानमा उगटनामा समान खेलमा 36 अङ्क बढ़ेलक नेदरल्याण्ड तेस्रो ठाउँमा उक्लल्बा नेपाल यही श्रृंखलाकै पहिलो खेलमा नामिबियासँग 8 विकेटले पराजित हुइल रहेको दोस्रो खेलमा नेपाल घरेलु टोली नेदरल्याण्डसँग 6 विकेट स्तम्भ बनेर रहे नेपाल यही पाछ अन्तिम खेल बुधबार नेदरल्याण्डस विरूद्ध खेललक यही श्रृंखलाकै समापन गर्न हुइल्बा 8 टोली सहभागी लीग टूमा 1 ओभरधान कुल 36 खेल खेलपाछ शीर्ष चारमा रहना टोली विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायरमा छनौट हुन वा 1-2 विषय मान्यता प्राप्त गर्न शीर्ष 6 स्थानमा अटाई पर्न हुन् समाचार संग खोज खबर से पहले खबर के मुख्य शीर्षक फिर से एक प्रणाली जोखिम घटना कानून संशोधन आवश्यक लग जनप्रतिनिधि कहे बाल बालिकी के सवाल ध्यौर बाल संरक्षण संस्था स्थानीय पालिका सहकार्यकर्मी बैठड़ी में घास कटना क्रम ढुंगाला के 22 वर्षीय युवती की मृत्यु विश्वकप लीग टू नेपाल नामीबिया विरुद्ध बोलिंग करती टीटा बुकला खोज खबर तथा प्राविधिक मित्र दीपेन्द्र भट्टा यहां धन्यवाद दे टीटा बुकला खोज खबर से मैं सीता चौधरी विदाई हूं या कपा 6 बजे के खोज खबर सुनना सीख ली सामुदायिक रेडियो टीका प्रेफरेंस सुनती रवि सामना।

0: होइन पनि हौ वहाँ 62 नम्बर लक्ष्य भा देखाउ त यस्तो लेखाउ त
1: मुर्गिन दाना देना जाला म काकर न ठिक फाजा कि अब न
0: एक फो तपा बाका मुर्गिन फार छे लक्ष्य से डुरेले से बक्सा कि आनो हारी छ त
1: तापन घिस्काई चलाई नि होइ नहीं तो अमन दस सागर बेन घर भीतर आई लागी कल से भगेबी
0: पारक भीतर पैट का मुर्गी मुआडी और खाड़ी कहीं का भगाए खोज लखो का
1: आरम कीड़ा फटिंगा मुंह सांप सिर निचा कर कहीं का फलाम को जारी लगा ले बात तब पा मुर्गी खेती बुगाई नहीं सेकी बेन अपना ना दाखी दूर रह बिना
0: हो बिना तो क्या करना हो तब पा देखती की डर नागा लगना रही सा देव तब पा तो अपन ना घूमकर बारी वो साल गिनता
1: हमरे चल सांपन से डरे ना नहीं होनी मुखरखी अमन से डरे था यदि क्यों जान अनजान में चलाई लगी पति रक्षा करत लाग व आपन बचाव करत लाग साम दसना कर था
2: सापन से दूर रही सापन रीस नी लगाई व नी जिसके साप मने देख कर डरे था नी चला कर दूर रहने से साप नी दस्त पर मुखर खेना खाज बाहर निस्कर में नाम घास काट बेल ख्याल बेल ज्ञान बेल छू बेल से मने वही मारक लाग बाटा कना समझ कर पति रक्षा करना क्रम साप दसना कर था मने सापन व्यक्ति की मारक लाग रहा था उसी को करबे फिर साप दस ना कर
3: सर्पदंश संबंधी भर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाई लाग आधिकारिक वेबपेज www.snakebitenepal.org मा हेर सक्दै छ
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
5: घर कहिया सिर्जैबो पाछा से शुरू करल मने घर सिजार सेकल
6: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परे सान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहीं ना हो का
5: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना पटा सुगुर बने लबाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना वट्ट फे पटानी हुई कि गुंगवा बुरो हो ना कबू कहूँ रा घूम जाए ता था पाए
7: UPVC ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो काम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
8: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426

0: जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वडा कार्यालयके अनुरोध।
1: जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वाडावासी दादु भैया दिदी बहिनी हुक्रे सड़क के किनारमै पशु चौपाया नै बाँधेबी, सड़क किनारमै मल वस्तु नै कुरा देबी, साथै सड़क किनारमा पशु चौपाया बाँधके ढुङ्गा बालुवा गिट्टी मल कुराके दुर्घटना हुइले एकर जिम्मेवारी स्वयं व्यक्ति हुक्रा लेह पर्न बा।
0: जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वाडा कार्यालय लाइकपुर।

0: राम्रो अल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न।
1: ए हो त, कहाँ पाइने रहेछ दिदी अल्मोनियमको झ्याल ढोका?
0: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुरमा जमरा पारी छ नि मिलन अल्मोनियम ग्लास हाउस, त्यही जानु होला नि।
1: अब त म ढुक्क।
2: मिलन अल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली। प्रोप्राइटर मोहनदास भाट।
0: मोबाइल नम्बर 9848513426। जमरापारी, टिकापुर, कैलाली।
1: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
3: मैं नहीं जाइस, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
1: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपारके तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खटिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
5: संपर्क मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टीकापुर। फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477।

बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोल चोक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराइए। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरमे उकरा संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फैले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटा का आज था, का कना हो बाबा के ओस्ट बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं सीख ठो।
1: अरे कहाँ से नाम था
0: कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहीं एक आनल झोला जस का टस।

0: टिकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुल्यो।
1: टिकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तहका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा शैक्षिक सत्र 2083-84 नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश आवेदन फारम वितरण भइरहेको व्यवहार सम्बन्धित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ।
0: संकायहरू व्यवस्थापन संकाय तर्फका शैक्षिक कार्यक्रमहरू
1: बीबीए र बीबीएस ऐच्छिक विषयहरू एकाउन्टेन्सी फाइनान्स र मार्केटिङ
0: प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र समय बीबीए का लागि साउन 17 गते बिहान 8 बजे बीबीएस का लागि साउन 17 गते बिहान 10 बजे
1: शिक्षा शास्त्र संकाय बीएड ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश नेपाली हेल्थ एन्ड म्याथमेटिक्स
0: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे
1: मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय बीए ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश डेभलपमेन्ट स्टडीज सोसियोलोजी एन्ड इकोनोमिक्स
0: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते बिहान 8 बजे कक्षा सञ्चालन भदौ 1 गते देखि
1: क्याम्पसका विशेषताहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट 1 वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सुनिश्चितता तथा प्रत्याहन क्यूए प्राप्त सरकारी क्याम्पस
0: कुल विद्यार्थी भर्नाको 25% विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको
1: न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनमा जोड दिइने
0: पीएचडी तथा एमफिल गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट प्राध्यापन गराइने
1: आईसीटी इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न नन क्रेडिट कोर्सहरूका कक्षाहरू तथा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने
0: उपचार कक्ष ई लाइब्रेरी फ्री वाइफाई प्रोजेक्टर डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सहितका कक्षा कोठा शुद्ध खाने पानी प्राथमिक उपचार कक्ष व्यवस्थित क्यान्टिन खेल मैदान लगायत सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको
1: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त देशभरिका अन्य क्याम्पसहरूमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिने
0: कक्षा 12 को पूरक परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले समेत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्
1: थप जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-088 र 561-088
0: टिकापुर बहुमुखी क्याम्पस टिकापुर कैलाली
2: कार्यक्रम छोट मिठ साता के बुधबार दिन के 1 बजे से अपने उगन थारू भाषा के कोई गीत मन परत
3: जब देखनो तो हिन है
2: यदि मन परत हुई कल से अपन मनन सुनना चाहती कल से हमन फोन करी और कही महीन ई गीत मन परत गीत के बोल बताई गीत मन परना के दुई ठो कारण वो गीत कौन एल्बम के हो या फिल्म के नाम बताई और अंतिम में एक जन के नाम अनिवार्य ले दी कल से हमारे वो गीत अपने पक्के से सुना तो उठाई मोबाइल और डायल कर भी 091-560-255 साता के बुधवार दिन के 1 बजे जरूर डायल करे हुई कार्यक्रम छोट मीट में केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 MHz में सुने ना बिस्तरी मई कार्यक्रम संचालक रमेश मिशन के साथ में